एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीति

0: पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः की 6:05 हुए हैं। चिंतन

मानव जन्म ईश्वर का सर्वोपरि उपहार है। इससे बढ़कर कोई और संपदा ईश्वर के पास ऐसी नहीं है जो किसी प्राणी को दी जा सके। इस उपहार के बाद एक और अनुदान ईश्वर के पास शेष रहता है, जिसे केवल वही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से मुख मोड़कर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर चलने का संकल्प लिया है, जिन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने का निश्चय किया है। इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का धैर्य और साहस के साथ स्वागत करने की क्षमता जिनमें है, ये अनुदान उन्हीं के लिए सुरक्षित है।

भगवान असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। इस संसार में जो भी प्रसन्नता हम देखते हैं वो उन्हीं के कारण है। अपनी सर्वव्यापी शक्तियों के बावजूद वे विशुद्ध और अप्रभावित रहते हैं।

हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और उन्हें बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है। वे बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वे संकटों से रक्षा करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 90।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज विशेष के साथ जानकारी देंगे शांति के साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इसके साथ साथ जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर। ऐतिहासिक स्थल रोहड़ू की आज के इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे और पर्यावरण में जानकारी देंगे उपयोगी पुष्प डहेलिया की। 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। प्रातः 8:30 पर एक ही फिल्म के क्रम में आज सुनिए फिल्म हे बेबी के गीत। प्रातः 9:00 समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। दस बजे सुनिए फिल्म संगीत। 10:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 11:05 पर आज आपको सुनवाए जाएंगे हिमाचली लोकगीत। 11:30 पर सुनेगा देशभक्ति गीत। दोपहर 12:00 समय होगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर कार्यक्रम घर परिवार में बातचीत का विषय रहेगा शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनेगा कुछ भजन। 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच और आज के इस कार्यक्रम का विषय रहेगा युवाओं के सपने और परिवार की उम्मीदें। 6:06 पर आप सुनेंगे सदाबहार संगीत। 6:30 पर कार्यक्रम मौजा ग्रैंडिया में बातचीत का विषय रहेगा चेरी और पलम की खेती बाड़ी। 7:10 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर और इसमें जानकारी दी जाएगी खुम्ब उत्पादन हेतु प्रशिक्षण के बारे में। रात्रि 8:00 सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस और रात्रि 9:15 पर हिम दर्शन आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर चित्र भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 11:00 3:00 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9:00, दोपहर 1:00, शाम 5:00, 7:00 और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, दोपहर 1:05, शाम 5:05, 7:05 और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां संपूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारं आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किम राज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किम राज्यस्य राज्यत्वदिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओम प्रकाश माथुरः, सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेंग सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोपि उत्सवेस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनान देशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिका देशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य 2-3 दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स की विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो रोजाना की ही तरह आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आज विशेष के साथ।

श्रोताओ, आज 16 मई है और 16 मई का ये दिन इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। सोलह मई 1999 में दक्षेश का 2002 में होने वाला शिखर सम्मेलन थिम्पू में कराए जाने की घोषणा हुई थी। आज ही के दिन 16 मई 2006 में न्यूजीलैंड के 42 वर्षीय मार्क एंजेलिस ऐसे पहले पर्वतारोही बने जिन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया। आज ही के दिन 16 मई 1948 में हिंदी की आधुनिक कविता के सम्मानी और शीर्ष रचनाकारों में से एक मंगलेश डबराल का जन्म हुआ। और श्रोताओं, आज ही के दिन मनाया जा रहा है सिक्किम दिवस भी। सिक्किम दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है, जो 1975 में सिक्किम के भारत की 22वें राज्य के रूप में गठन की स्मृति में मनाया जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे शांति के साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। श्रोताओ, शांतिपूर्वक एक साथ रहने का अर्थ है मतभेदों को स्वीकार करना और दूसरों को सुनने, पहचानने, सम्मान करने और उनकी सराहना करने की क्षमता रखना, साथ ही शांतिपूर्ण और एकजुट तरीके से जीवन जीना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव 72/130 में 16 मई को शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, जिसका उद्देश्य शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को नियमित रूप से एकजुट करना है। इस दिवस का उद्देश्य मतभेदों और विविधता में एकजुट होकर एक साथ रहने और कार्य करने की इच्छा को बनाए रखना है, ताकि शांति, एकजुटता और सद्भाव की एक स्थायी दुनिया का निर्माण हो सके। शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें शांति और अहिंसा को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों की याद दिलाता है। इस कार्य के महत्व को कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए और हमेशा बहुत कुछ किया जाना बाकी है। श्रोताओ, अब कार्यक्रम में एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार इसका उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना और शांति एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता का लाभ उठाना है। प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियां, शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति, सतत विकास, संचार, ऊर्जा और चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस समारोह यूनेस्को द्वारा 16 मई 2018 को आयोजित किया गया था। प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों के अध्ययन ने हमें दुनिया को असाधारण तरीके से बदलने में मदद की है। प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों में माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीनें, टेलीस्कोप, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक लाइट और टेलीविजन स्क्रीन शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की क्षमता का उपयोग करना है।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे ऐतिहासिक स्थल रोहडू की। श्रोताओं, रोहडू शिमला से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है। पब्बर नदी के तट पर स्थित ये गांव पब्बर घाटी का एक हिस्सा है। यहाँ नदी का साफ पानी, ट्राउट मछलियों और फिशिंग करने आए लोगों दोनों का मन बेहद लुभाता है। इसके अलावा रोहडू के सेबों से लदे बाग भी यात्रियों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप जुलाई से अगस्त के आसपास आते हैं तो आप खेतों में सेब को उगते देख सकते हैं। अगर आप सितंबर के अंत में रोहडू जाते हैं तो पेड़ों से ताज़े रसदार सेब तोड़कर खाने के लिए तैयार रहें। इस छोटे से कस्बे की असीम प्राकृतिक सुंदरता आपको एक नए जोश से भर देती है। और हम भी आपको फिर से जोश में भरेंगे इस प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। और कार्यक्रम में अब समय हुआ है पर्यावरण का, और पर्यावरण में आज आपको जानकारी दे रहे हैं उपयोगी डहलिया की। श्रोताओं, डहलिया या डहलिया सूर्यमुखी कुल द्विदलीय वर्ग का पौधा है। इसका वितरण केंद्र मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका में है। यह बड़े आकार का अनेक रंगों और आकारों में पाए जाने वाला ऐसा आकर्षक फूल है जिसमें नीले रंग को छोड़कर विभिन्न रंगों और रूपाकारों की 50,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। रंग बिरंगे फूलों के कारण डहलिया के पौधे बागों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। डह नामक स्वीडिश वृक्ष विशेषज्ञ की स्मृति में लिनियस ने इस पौधे का नाम डहलिया या डहलिया रखा। इसके पौधे 2-2.5 मीटर तक ऊंचे होते हैं, परंतु एक बौनी जाति केवल 0.5 मीटर ऊंची भी होती है। डहलिया के पौधों की जड़ों में खाद्य पदार्थ एकत्र होकर उन्हें मोटी बना देते हैं। इनके फूल सूर्यमुखी के सदृश होते हैं। इनकी नई किस्मों में गेंद के समान गोल तथा रंग बिरंगे फूल उगते हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में चलते चलते एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के बाद अब कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा। कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शुभ प्याग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः की 7:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30

0: लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, NEET UG की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, फिल्म हे बेबी के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जो बनी 2007 में। ये एक कॉमेडी फिल्म है जो साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित और साजिद खान द्वारा निर्देशित की गई।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, फिल्म हे बेबी के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। ये फिल्म बनी 2007 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाए अक्षय कुमार, फरदीन खान, रितेश देशमुख, विद्या बालन, जुआना सांध्वी और बोमन ईरानी ने। और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म के क्रम में फिल्म हे बेबी के गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बजे हैं और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतांजलि के साथ और आप सुन रहे हैं हमारा फेवरेट रेडियो स्टेशन आकाशवाणी धर्मशाला। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, सुबह की फ्रेश हवा, चाय की खुशबू और दिल में प्यार हो तो दिन और भी खूबसूरत बन जाता है।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म किक से। श्रोताओं, प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि जिंदगी की एक खूबसूरत सी ताकत है। प्यार वो है जो बिना किसी स्वार्थ के दिलों को जोड़ता है। माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार, दोस्तों की सच्ची दोस्ती और अपनों का साथ, यही जिंदगी की खास बात है।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आपने ट्यून किया है कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, प्यार सिर्फ एक जगह सीमित नहीं होता। प्यार माँ की दुआ में होता है, दोस्तों की हंसी में होता है और उन छोटी छोटी बातों में होता है जो हमें मुस्कुराना सिखाती हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि और ये कार्यक्रम जारी रहेगा प्रातः 9:30 पर भी।

0: केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 9:20 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल होगा मतदान। कुल 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार ने पूरी की अपनी सभी चुनावी गारंटियां, चुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते चुनावों में सबक सिखाने को जनता तैयार। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवा पीढ़ी से देश की पवित्र वैदिक संस्कृति से जुड़ने का किया आह्वान। और लाहौल स्पीति जिला के लोगों को अब बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन से मिलेंगी दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 439 पदों के लिए होने वाले इन चुनावों में 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 4 नगर निगम सहित 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में ये मतदान होगा। इन चुनावों में कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,808 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। नगर पंचायत व नगर परिषदों में मतों की गणना कल मतदान के बाद होगी, जबकि नगर निगम चुनाव के लिए पड़ने वाले वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 5 गुटों में बंटी भाजपा इन चुनावों में जीत के झूठे सपने देख रही है। सोलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा पूरी तरह से आपसी लड़ाई और अंदरूनी खींचतान के दौर से गुजर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने अपनी सभी चुनावी गारंटियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम सहित शहरी निकायों के चुनाव में कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पर इन चुनावों पर कांग्रेस की जीत होगी। इस बीच मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना होंगे। वे कल दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएंगे। उनका 18 मई को केरलम के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों और झूठी गारंटियों से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है। मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रदेश की 4 नगर निगमों में भाजपा की जीत का दावा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव महज स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि प्रदेश में कांग्रेस की विदाई की पटकथा लिखने वाले साबित होंगे।
1: मैं सभी जगह जाकर के आया हूं। मैं पालमपुर भी जाके आया, धर्मशाला भी जाकर के आया हूं और उसके साथ साथ में मैं सोलन भी जाकर के आया हूं। सभी जगह इस तरह का वातावरण है। प्रदेश की सरकार के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा लोगों के मन में है, लोग सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और परिणाम जब निकलेगा आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 4 कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की निगम बनेगी।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए प्रत्याशियों को कल चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। प्रदेश में इस बार 3 चरणों में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के लगभग 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। हर पद के लिए अलग अलग रंग निर्धारित किया गया है। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्का नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के वोटों की गिनती 31 मई को होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित नगर निकायों के चुनावों में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत हासिल कर क्षेत्र के विकास में राज्य सरकार की नीतियों व निर्णयों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि चुनावी गारंटियों के दम पर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार के लिए अब यही गारंटियां मुसीबत साबित हो रही है। शिमला जिला के ठियोग में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान निधि से लेकर रोजगार के वादों तक सभी गारंटियों का परिणाम धरातल पर शून्य है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी से देश की पवित्र वैदिक संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया है। बेंगलुरु में वेद आगम संस्कृत महापाठशाला में विद्यार्थियों व विद्वानों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान देश की सनातन सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे गुरुकुल हमारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी और CBI इस मामले की जाँच कर रही है। NTA ने बताया कि उम्मीदवार 21 मई तक अपनी पसंद के अनुसार अपना वर्तमान पता व पहले और दूसरे परीक्षा के शहर का चयन अपडेट कर सकते हैं। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों को बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन के माध्यम से दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री मिल पाएंगी। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता के अनुसार DDMA ने खोज व बचाव कार्यों के लिए अत्याधुनिक रेस्क्यू ड्रोन खरीदा है।
2: दुर्गम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अब आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को आधुनिक तकनीक का मजबूत सहारा मिल गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खोज और बचाव कार्यों के लिए एक अत्याधुनिक रेस्क्यू ड्रोन खरीदा है। इस हाईटेक ड्रोन का सफल प्रशिक्षण श्रृंखला दर्रा में लगभग 16,580 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जहां इसने राहत सामग्री पहुंचाने की क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। ये ड्रोन करीब 30 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है और 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ड्रोन में डे नाइट कैमरा, 10 गुना जूम, ऑटोमेटिक रिटर्न सिस्टम और तेज हवाओं में भी काम करने जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी स्थितियों में ये ड्रोन दूरस्थ इलाकों तक दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री तेजी से पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का राष्ट्रीय न्यास अधिनियम एक मजबूत कानूनी व कल्याणकारी निकाय साबित हो रहा है। ऊना जिला में राष्ट्रीय न्यास द्वारा पंजीकृत संगठनों के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
3: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए ऊना जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्थानीय समिति के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले जिन दिव्यांगजनों को पारिवारिक संरक्षण उपलब्ध नहीं है, उन पात्र व्यक्तियों के लिए स्थायी अथवा सीमित अवधि के विधिक संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। ऊना जिला में अब तक 113 स्थायी और 6 सीमित कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सामाजिक समावेश हेतु जिला स्तरीय स्थानीय समिति, सामाजिक स्वयंसेवी संस्था आश्रय की मदद से पात्र व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण और कौशल विकास के माध्यम से भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, 2 लाख व्यावसायिक उपभोक्ताओं को झटका, 1 रुपये यूनिट महंगी हुई बिजली। दैनिक जागरण ने लिखा है, हिमाचल में व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगी महंगी बिजली। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, पुलिस कर्मियों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी सरकार की मंजूरी। हिमाचल दस्तक के अनुसार प्रदेश में शहरी निकायों के लिए चुनावी शोर थमा, अब डोर टू डोर प्रचार शुरू। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, बारालाचा शिंकुला दर्रा खुलने के बाद बर्फबारी देखने उमड़े पर्यटक, आज बारिश का येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल होगा मतदान। कुल 1,147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार ने पूरी की अपनी सभी चुनावी गारंटियां, चुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते चुनावों में सबक सिखाने को जनता तैयार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी से देश की पवित्र वैदिक संस्कृति से जोड़ने का किया आह्वान। और लाहौल स्पीति जिला के लोगों को अब बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन से मिलेंगी दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग। श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है और ये रहा कार्यक्रम का अगला प्यार भरा गीत।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म ऐतराज का ये गीत।

डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाय एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, और ये रहा कार्यक्रम का अगला प्यार भरा गीत। गायक कलाकार सोनू निगम और तुलसी कुमार, और फिल्म का नाम हमको दीवाना कर गई। जी हाँ श्रोताओं, आपको भी ये गीत जरूर दीवाना कर जाएगा।

श्रोताओ, जिंदगी में अगर प्यार और रिस्पेक्ट हो तो हर रिश्ता मजबूत बन जाता है। इसलिए आज एक काम जरूर करिएगा, अपनों को बोलिएगा थैंक यू मेरी जिंदगी में होने के लिए।

श्रोताओं, राहत फतेह अली खां की आवाज़ में गाए इसी प्यार भरे गीत के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। मुस्कुराते रहिए, प्यार बनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बजे हैं और अब समय है फिल्म संगीत का जो आपको सुनवाएंगी ज्योति।

जी बिल्कुल, हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त ज्योति लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी श्रोताओं को हमारा स्नेह अभिवादन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं सिर्फ तुम फिल्म के इस गीत के साथ। ये संगीत है नदीम श्रवण का, बोल लिखे हैं समीर ने, आवाज का जादू बिखेरा है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

आकाशवाणी धर्मशाला के साथ हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं और इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला नगमा। अब आपके रेडियो सेट्स पर हम पहुंचा रहे हैं साजन फिल्म से। एसपी बाला सुब्रमण्यम की मदहोश आवाज है। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत एक बार फिर नदीम श्रवण का।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की मिलीजुली आवाज में ये गीत आपने सुना संघर्ष फिल्म से। गीत को लिखा समीर ने, जतिन ललित का संगीत निर्देशन।
1: मई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
2: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और फिल्म संगीत का इस समय आनंद ले रहे हैं। राजा फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट्स पर पहुंचा रहे हैं। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत नदीम श्रवण का।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं जिगर फिल्म से ये गीत। अभिजीत और साधना सरगम की आवाजें हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है और गीत को लिखा है समीर ने।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। सुबह के 10:30 हुए हैं और ये समय है आकाशवाणी के अगले कार्यक्रम हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित। ये कार्यक्रम अब आप सुनेंगे और कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं करनैल राणा की आवाज़ में गाए इस लोक गीत के साथ।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाय एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
4: हिमाचली लोकगीतों का आनंद इस समय आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के संग। कार्यक्रम का अगला लोकगीत अब आपको सुनवा रहे हैं निम्मो चौधरी की आवाज में।

0: अशोक कुमार की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। कार्यक्रम में अब रुकते हैं और लेते हैं ये कमर्शियल ब्रेक।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
1: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
5: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
6: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं दीपक कुमार की आवाज में गाया हुआ।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 439 पदों के लिए होने वाले इन चुनावों में 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 4 नगर निगम सहित 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में ये मतदान होगा। इन चुनावों में कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,808 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। नगर पंचायत व नगर परिषदों में मतों की गणना कल मतदान के बाद होगी, जबकि नगर निगम चुनाव के लिए पड़ने वाले वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 5 गुटों में बंटी भाजपा इन चुनावों में जीत के झूठे सपने देख रही है। सोलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा पूरी तरह से आपसी लड़ाई और अंदरूनी खींचतान के दौर से गुजर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने अपनी सभी चुनावी गारंटियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम सहित शहरी निकायों के चुनाव में कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पर इन चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी। इस बीच मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना होंगे। वे कल दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएंगे। उनका 18 मई को केरलम के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों और झूठी गारंटियों से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है। मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रदेश की 4 नगर निगमों में भाजपा की जीत का दावा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव महज स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि प्रदेश में कांग्रेस की विदाई की पटकथा लिखने वाले साबित होंगे।
1: मैं सभी जगह जाकर के आया हूं। मैं पालमपुर भी जाके आया, धर्मशाला भी जाकर के आया हूं और उसके साथ साथ में मैं सोलन भी जाकर के आया हूं। सभी जगह इस तरह का वातावरण है। प्रदेश की सरकार के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा लोगों के मन में है, लोग सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और परिणाम जब निकलेगा आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 4 कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की निगम बनेगी।
0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित नगर निकायों के चुनावों में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत हासिल कर क्षेत्र के विकास में राज्य सरकार की नीतियों व निर्णयों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि चुनावी गारंटियों के दम पर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार के लिए अब यही गारंटियां मुसीबत साबित हो रही हैं। शिमला जिला के ठियोग में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की सम्मान निधि से लेकर रोजगार के वादों तक सभी गारंटियों का परिणाम धरातल पर शून्य है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों को बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन के माध्यम से दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री मिल पाएंगी। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता के अनुसार डीडीएमए ने खोज व बचाव कार्यों के लिए अत्याधुनिक रेस्क्यू ड्रोन खरीदा है।
2: दुर्गम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अब आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को आधुनिक तकनीक का मजबूत सहारा मिल गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खोज और बचाव कार्यों के लिए एक अत्याधुनिक रेस्क्यू ड्रोन खरीदा है। इस हाईटेक ड्रोन का सफल प्रशिक्षण श्रृंखला दर्रा में लगभग 16,580 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जहां इसने राहत सामग्री पहुंचाने की क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। ये ड्रोन करीब 30 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है और 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ड्रोन में डे नाइट कैमरा, 10 गुना जूम, ऑटोमेटिक रिटर्न सिस्टम और तेज हवाओं में भी काम करने जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी स्थितियों में ये ड्रोन दूरस्थ इलाकों तक दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री तेजी से पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इस महीने की 3

मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। राकेश सिंह सलाथिया की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत।

0: कुशल कुमार की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीत।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं मानसिंह और सुनील राणा के मिले जुले स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे देशभक्ति गीत।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।

मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

मणिकर्णिका फिल्म से ये देशभक्ति गीत आपने सुना शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में। गीत में संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने। कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं माँ तुझे सलाम इस फिल्म से।

सरफरोश फिल्म से ये देशभक्ति गीत आपने सुना। रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम के मिले जुले स्वर में इसरार अंसारी ने इस गीत को लिखा और संगीत से सजाया जतिन ललित ने। कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं अगला देशभक्ति गीत, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस फिल्म से।

उदित नारायण की आवाज में ये देशभक्ति गीत आपने सुना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस फिल्म से जतिन ललित ने इस गीत में संगीत दिया और गीत को लिखा जावेद अख्तर ने।

हमें भारत कहते हैं जी। ये देशभक्ति गीत आपने सुना होटल मुंबई फिल्म से स्टेबिन बेन की आवाज़ गीत को लिखा कुमार ने। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से ये देशभक्ति गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ें हैं।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं और अब समय है फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर है फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ। इस गीत को गाया है आशा भोंसले ने और फिल्म है अब दिल्ली दूर नहीं।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फिल्म दस नंबरी का ये प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज़ में, और साथ दिया था लता मंगेशकर ने।

सैनिक भाइयों, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गाए फिल्म सौतन के इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम घर परिवार।

स्वागत सभी प्यारी सखी सहेलियों का आपके अपने कार्यक्रम घर परिवार में। हमारे श्रोताओं का भी बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आप सभी को रेडियो सखी ज्योति का स्नेह अभिवादन। हाजिर हैं एक नए दिन, नई उमंग, नई जानकारियों, मधुर गीतों और आज के विषय विशेष के साथ। तो आइए सखियों, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं कार्यक्रम में आज की बातचीत। सखियों, मानव जीवन में बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। जो समय और परिस्थिति के सापेक्ष नहीं बदलता है, वह निश्चित रूप से असफल भी हो जाता है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, खुद को विकसित करना है, फिर खुद में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। अपनी सोच का, विचारों का, नज़रिया बदलना होगा। पहले खुद में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, तभी फिर दूसरों में भी ऐसे परिवर्तन लाने का प्रयास हम कर सकते हैं। एक दायरे तक खुद को कभी सीमित नहीं करना है। ऐसा करके हम खुद को आरामदायक महसूस करवाते हैं, लेकिन फिर हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वह भी एक सीमा के अनुसार ही कार्य करता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम खुद को कैद करके ना रखें, बल्कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जो समय के प्रवाह के साथ नहीं चलते, समय उन्हें अपनी परिधि से बाहर कर देता है। फिर स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसी तालाब में स्थिर हुए पानी की होती है। इसलिए नदी का बहता हुआ पानी बनने की ही कोशिश हम करें, जीवन प्रवाहमान बना रहें। और सखियों, उसमें मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों की स्थापना भी होती रहनी चाहिए। और अपनी संस्कृति से हमने जुड़कर रहना है, अपने आदर्शों और अपने प्रतिमानों को भूल नहीं जाना है भाई, अपनी जड़ों से हमने दूर नहीं जाना है। और सखियों, थोड़ी सी बात मौसम की भी आपके साथ करते हैं। तो गर्मियों का सखियों ये मौसम है और तपिश इन दिनों बढ़ गई है। उमस भरा ये मौसम होता है और उमस के साथ साथ जोखिमों से भरा भी ये मौसम होता है। ऐसे मौसम में लापरवाही हमने बिल्कुल नहीं बरतनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी तो सखियों पीना ही है। तरल पदार्थों का सेवन जो है वो अपनी आहार तालिका में इन दिनों बढ़ा देना चाहिए और खुद को साफ और स्वच्छ भी हमने बनाए रखना है। और सखियों, इस मौसम में बहुत तंग कपड़े ना पहने, ढीले वस्त्र पहने और सूती कपड़ों का ही चयन करें, क्योंकि इससे जो है वो हवा का प्रवाहमान बना रहता है, बेचैनी जो है वो नहीं होती है और पसीना जो है वो अच्छे से ऐसे फैब्रिक में सूख जाता है। और गीत संगीत भी सखियों साथ साथ सुनते रहना है। तो चलिए आपका मनोरंजन करवाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम घर परिवार रेडियो सखी ज्योति के साथ। आज सखियों 16 मई है और आज का दिन कैलेंडर में सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया की प्रतिज्ञा जहाँ नफरत की कोई जगह ना हो, जहाँ सरहदें दिलों को ना बांटे, आज शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। सखियों हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ मतभेद अक्सर झगड़ों में बदल जाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि विविधता हमारी कमजोरी नहीं ताकत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इस दिन को इसलिए घोषित किया था ताकि हम सब जाति धर्म और राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर भाईचारे से रह सकें और मानवता का संदेश दे सकें। और शांति का मतलब सिर्फ युद्ध का ना होना नहीं है बल्कि शांति का मतलब है एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरों की बात सुनना और समावेशी समाज बनाना। तो आइए आज के दिन हम एक प्रतिज्ञा लें, अपने पड़ोसी से, अपने सहकर्मी से, अपनों से, हर उस व्यक्ति से जो हमसे अलग है, हम प्रेम और सहिष्णुता से पेश आएंगे। और यदि आज हम सब मिलकर शांति के बीज बोएंगे तभी

भावी पीढ़ी को कल सुकून भरा जीवन दे पाएंगे। और सखियों, आज 16 मई को एक और खास दिवस मनाया जाता है। कुछ पंक्तियां आपको सुनवा रहे हैं। अस्तो मां सद गमया तमसो मां ज्योतिर गमया, ये प्रार्थना आपने सुनी होगी और आप गाते भी होंगे। इससे तात्पर्य है, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जा रहा है। ये दिन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले तत्व प्रकाश का जश्न मनाने का दिन है। सखियों, प्रकाश न केवल हमें देखने में मदद करता है, बल्कि ये विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास का आधार है। चाहे वह सूरज की किरणें हो, हमारे घरों में जलता बल्ब हो या अस्पताल में लेजर तकनीक, प्रकाश हर जगह है। सखियों, क्या आपको पता है कि आखिर 16 मई को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 16 मई 1960 को भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन ने लेजर का पहला सफल परीक्षण किया था और यह वैज्ञानिक उपलब्धि हमारे जीवन में क्रांति लेकर आई। इसने चिकित्सा, संचार और तकनीक के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत की है। आज आप देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर सर्जरी होती है। इस वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की थीम है, एक विषय के साथ इसे मनाया जाता है, तो इस वर्ष की थीम है एक टिकाऊ भविष्य के लिए प्रकाश। और ये थीम हमें याद दिलाती है कि कैसे प्रकाश आधारित तकनीकें जैसे कम ऊर्जा खपत वाले लाइट्स LED, सौर ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकता है। ये केवल रोशनी नहीं बल्कि एक सुरक्षित और हरित भविष्य की रोशनी है और इसके महत्व को भी हमने समझना है और ऊर्जा दक्षता की ओर भी बढ़ना है। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं इस गीत की ओर।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: और एक बार फिर लौट आए हैं कार्यक्रम घर परिवार में, जहां आज सखियों सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आपसे बात होती है कपड़ों के रख रखाव की। आज सखियों हम बात करेंगे कटवर्क फैब्रिक की, जहां कपड़े पर छोटे छोटे

पे छेद करके डिजाइन बनाई जाती है जो फैशन जगत में सदाबहार है। ये जितना सुंदर दिखता है उतना ही नाजुक भी ये कपड़ा होता है। गलत तरीके से धोने से या फिर स्टोर करके रखने से इसके धागे निकल सकते हैं या डिजाइन खराब हो सकती है। कट वर्क वाले कपड़े को मशीन में धोने की बजाय हाथ से धोना सबसे सुरक्षित होता है। ठंडे पानी में हल्का मुलायम डिटर्जेंट या बेबी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कपड़े को जो है वो रगड़ने से भी बचना चाहिए। कटवर्क कपड़े को कभी भी सीधी धूप में ना सुखाएं, इससे रंग फीका पड़ सकता है और धागे कमज़ोर हो सकते हैं। कटवर्क वाली जगह पर हमेशा कपड़े को उल्टा करके ही इस्त्री करना चाहिए। और एक सुझाव आपके लिए ये है सखियों कि यदि कपड़ा बहुत नाजुक है जैसे सिल्क पर कटवर्क है तो फिर उसे ड्राई क्लीन करवाना ही बेहतर होता है। और अब सखियों सेहत और स्वाद की दुनिया की तरफ आपको ले चलते हैं। खान पान से जुड़ा हमारा ये अंक है जिसमें आज बात होगी, बताते हैं आपको सखियों। सुबह की गुनगुनी धूप हो, चटपटा सलाद हो, गर्मियों की दोपहर हो या त्वचा की देखभाल हो, एक चीज़ जो सबसे पहले याद आती है, आप भी सोचिए सखियों क्या है ऐसी चीज़। और बहुत सी सखियां जी हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, वह है नींबू। छोटा सा लेकिन खट्टेपन का राजा, उत्तर पूर्वी भारत से निकलकर पूरी दुनिया में मशहूर ये चमकीला फल सिर्फ स्वाद ही नहीं स्वास्थ्य का भी खजाना है। चलिए सखियों जानते हैं फिर इसके बारे में। नींबू जो है वो भारतीय रसोई का अहम हिस्सा होने के साथ साथ गुणों का भंडार तो है ही। नींबू एक खट्टा पीले रंग का फल है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ीदार पौधों पर उगता है। नींबू संतरे और अंगूर की तरह खट्टे फलों की श्रेणी में आता है। नींबू के पौधे का वैज्ञानिक नाम सिट्रस लिमोन है। नींबू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में भारत, अर्जेंटीना, स्पेन, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो चलिए जानते हैं अब इसके कमाल के फायदे। नींबू में विटामिन सी भरपूर होती है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संक्रमण और बीमारियों को हमसे कोसों दूर रखता है। सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद पीने से पाचन बहुत अच्छा रहता है सखियों। ये शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी बहुत मदद करता है। नींबू का रस दाग धब्बों को कम करता है और त्वचा को चमकदार भी बनाता है। ये रूसी से भी बचाव करता है। इसमें मौजूद फाइबर भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे वजन हमारा नियंत्रित रहता है। और सिर्फ खाने में ही नहीं, नींबू एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक और घरेलू क्लीनर भी है। लेकिन याद रखें, नींबू बहुत अच्छा है लेकिन ज़्यादा अम्लता के कारण इसका सेवन, अधिक सेवन दांतों की सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग आपने करना है। और चलिए कार्यक्रम में अब ये गीत आपको सुनवा रहे हैं

कार्यक्रम के इसी अंतिम नगमे के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र सिंह।

0: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members are expected to attend what organizers are calling a historic address. The event will be a highlight of the Prime Minister's trip to the country. Prime Minister Modi reached the Netherlands late last night to a warm reception. Members of the Indian community, representing different age groups, regions and faiths, gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
4: Modi, Modi, Modi, Modi.
3: The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora, and India's global outreach.

0: ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए

किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीज़ें और भी जलती थीं और कई चीज़ों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील, एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है, और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे, सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्क़त करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है, वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफ़ी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नज़र आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं, पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती, कलियां महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए ज़रा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए, और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी।

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना, सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने, महेंद्र कपूर की आवाज़, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैंप की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है, इन्होंने लालटेन की बात कही है। और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की, फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे, शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूँ तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया, उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था, आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का ज़माना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन हैं। आज हमें अपना सुरीला सफ़र गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ है, और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो, अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर, और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के ज़माने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी। तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए। फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा कि रोज़ रोज़ ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था। साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था। ज्यादातर घर के बड़े लोग ही से शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था। बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे। आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफ़र की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक ज़माना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा। गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती हैं। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रही हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगल विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया, मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना ज़रूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना ज़रूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आँख से दूर है आँख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपके लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना।

0: को पाता है, जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ।
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहाँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणी फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें, गाना मंजिल शब्द पर।

0: गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाज़ा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें ये भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये दुनिया,

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर्मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर्मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया, याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज़ है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही हैं ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाज़ें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज़्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाज़ें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाज़ों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज़ एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाज़त देनी है। तो सुरीला सफ़र कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिवजी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है।

गंगा ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल ना सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवन काल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्ट

0: ऑफ रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। मुख्य उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर

0: गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाज़ों में प्यार बरसाता, ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव परमन ने।

बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो हे बोलो।

0: हो, जवाब दो भी मेरी सुनो भी, मैं कब से नब में मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों सहित प्रदेश के 51 शहरी निकायों में कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा, जो दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी और कल शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। शहरी निकायों के लिए प्रदेश में 439 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार मैदान में है। नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है। नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए जा रहे हैं। शहरी निकाय चुनाव में लगभग 3,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगर निगम सोलन में मतदान के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 14 मतदान केंद्रों का जिम्मा महिला कर्मचारियों को सौंपा गया है। शहर में 7 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। उन्होंने शहर के सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है।
1: नगर निगम सोलन का चुनाव है, उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें हमारे जो शहर में इस वक्त 38 पोलिंग बूथ्स बनेंगे, इस बार हमने 14 पोलिंग बूथ्स जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। ये प्रयत्न किया है कि महिलाओं को इस चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एडेक्वेट पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं। और मैं सभी सोलन निवासियों से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने मतदान का प्रयोग करें और भारी संख्या में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल कर मतदान अवश्य करें।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनका कल नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने का कार्यक्रम है, जहां वे 18 मई को केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का 19 मई को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। यह दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस मौके पर नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। जेपी नड्डा ने डेंगू के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। CBSE ने कहा है कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे यह खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं। सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: ये थे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। विषय है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, जागरूकता, बचाव और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश। वाचक है राकेश शर्मा।
0: हर वर्ष 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य लोगों को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक करना, इसके लक्षणों, बचाव और समय पर उपचार के बारे में जानकारी देकर मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। डेंगू के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया गया है। बदलते मौसम, बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये केवल एक मौसमी बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। ऐसे में राष्ट्रीय डेंगू दिवस समाज को ये याद दिलाता है कि थोड़ी सी सावधानी और सामुदायिक प्रयास से इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो इजिप्ट नाम मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पनपता है और दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है। घरों के आसपास रखी पानी की टंकियां, पुराने टायर, कूलर, गमले, डिब्बे और अन्य पात्र मच्छरों के प्रजनन स्थल बन जाते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग समय समय पर लोगों से घर और आसपास सफाई बनाए रखने की अपील करता है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष करोड़ों लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। भारत में मॉनसून और उसके बाद के महीनों में डेंगू के मामले अधिक सामने आते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भी अब डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। पहले ये बीमारी केवल मैदानी और गर्म क्षेत्रों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब बदलते मौसम और तापमान के कारण इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। डेंगू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर और जोड़ों में तेज दर्द, कमजोरी, उल्टी और त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। कई बार मरीज की प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगती है।

0: साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूरी बाजू के कपड़े पहनना, मच्छरदानी का उपयोग करना और मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल भी बचाव में सहायक होता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, स्कूल, पंचायतें और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जागरूकता अभियान चलाती हैं। रैलियां, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है कि वे अपने घरों और मोहल्लों में पानी जमा न होने दें और परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करें। कई स्थानों पर स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लार्वा की जाँच करते हैं और लोगों को सावधानियां बताते हैं। डेंगू केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर और आसपास साफ सफाई रखें तो मच्छरों के प्रजनन को काफी हद तक रोका जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण डेंगू को बढ़ावा दे देते हैं। घर की छत पर रखे टूटे बर्तन, खुले ड्रम, कमरों की ट्रे और अनुपयोगी सामान में जमा पानी मच्छरों के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। इसलिए हर रविवार मच्छर पर वार जैसे अभियान लोगों को नियमित सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ वीडियो, पोस्ट और संदेशों के माध्यम से लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं। हालांकि कई बार गलत सूचनाएं भी फैलती हैं, इसलिए लोगों को केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लेनी चाहिए। डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स को लेकर भी कई भ्रांतियां फैल रहती हैं। डॉक्टर के अनुसार घबराने के बजाय समय पर चिकित्सीय सलाह लेना सबसे जरूरी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कई गांव में लोग अभी भी डेंगू के लक्षणों और बचाव के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। पंचायतों और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि गांव स्तर पर नियमित सफाई अभियान चलें और लोगों को जागरूक किया जाए तो डेंगू के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चले आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ। सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग,
2: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज।
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन, इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है। लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन। मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
3: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
3: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं।
2: यहां तो
0: क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
3: हाँ प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
4: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
5: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
3: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
5: लताएं भी रूठती हैं क्या?
3: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी हैं और प्रसन्न भी होती हैं। समझी?
4: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
3: क्या समझी है तू?
4: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
3: वो कैसे?
4: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
3: अरे अनुसुईया, ओह जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
4: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
3: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
4: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
3: धत।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
3: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
4: तेरे मुंह से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
3: परिहास ना कर।
4: अच्छा नहीं करती, बता।
3: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं,
4: तेरी तरह
3: फिर परिहास।
4: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
3: हाँ बता।
4: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
3: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
4: सच? मैंने अपने कानों से सुना है।
3: अच्छा,
4: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
5: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
3: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
6: अरे
3: भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
4: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
5: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
4: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
3: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
2: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
4: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
5: आपके आते ही भाग भी गया।
4: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजिए ना।
5: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
2: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
4: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य।
5: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
2: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
3: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी।
4: अब बैठ भी जा।
3: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
4: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
5: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
2: मैं क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूं। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूं।
4: आज यदि पिता कण्व यहां होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
2: और ही ढंग से?
5: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
3: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
2: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
4: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
5: बहुत मीठा है इसका गला,
4: करती रहती है सबका भला,
5: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
4: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
5: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
2: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
4: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
2: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
5: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
2: फिर
5: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर
2: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
4: किंतु क्या आर्य?
2: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
4: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
3: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
4: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
5: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
2: वृक्षों को सींचने का ऋण?
4: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
5: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
2: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
4: आप
2: ये लीजिए।
4: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
5: आपके पास ये अंगूठी?
2: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
4: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
5: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
2: मैं आभारी हूँ।
7: के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
2: ओह, लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
5: हे भगवान, अब क्या होगा?
7: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्चृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है। सावधान।
5: चलो चलो चलो, उस
8: साथी की यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
5: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
5: चलो शकुंतला।
3: चलो
2: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं हैं।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
4: ठीक है,
7: महाराज दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहाँ तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: कितनी प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवता, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवता, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो? इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला?
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाय पाडाला पिकलाय आम, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के ज़माने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार, मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
2: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
3: जरूर,
2: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
3: अन्ना जी के सिवा, वसंत देसाई के सिवाय।
2: अच्छा,
3: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया। अच्छा, मैंने
2: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
3: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
2: जी जी,
3: उनका उसका नाम था।
2: हाँ हाँ।
3: तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
2: जी।
3: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
2: जी, जी, जी।
3: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
2: हाँ,
3: हाँ। तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके गले में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
2: अन्ना जी मतलब
3: श्री रामचंद्र जी,
2: जी।
3: तो षण्मुखानंद में शो था।
2: हाँ।
3: और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे। तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
2: अच्छा।
3: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
2: हाँ,
3: नाम नहीं बताऊंगी। तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
2: जी, जी,
3: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में।
2: अच्छा।
3: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
2: Okay.
3: एक समय काली पास सुर है, तो हाँ, खर्च के जो सुर होते हैं,
2: हाँ,
3: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब। तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूँ क्या स्केल?
2: हाँ।
3: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
2: जी जी,
3: ये दोनों में फर्क था, संजी और अन्ना जी।
2: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
3: बहुत,
2: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी,
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ,
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: हाँ, अरे वाह, ये
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा,
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ,
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा,
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा वो आप किस हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी।
0: हाँ।
1: लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: निर्मला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ,
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से
0: जी, जी, जी.
1: कोई कोई गाने इतने गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कन्नड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ,
1: तो बस उनको मजा आता था सुनने में।
0: क्या बात,
1: उसका एक मंसूर का किस्सा है, मैं आपको
0: हाँ,
1: बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे,
0: हाँ,
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा, कटआउट
1: बहुत
0: बड़ा
1: कटआउट बनाया था,
0: हाँ, हाँ,
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
0: जी जी जी
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और

0: नहीं रियादे, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो
1: जी
0: मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं
1: जी जी
0: कि वो आपका पापा आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर
1: हाँ
0: के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है
1: हाँ
0: मंदसौर करके। तो हमारा शो ख़त्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
1: अच्छा
0: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
1: घूम
0: है,
1: रहा है,
0: ऐसा
1: अच्छा
0: लगता
1: अच्छा
0: था।
1: अच्छा
0: तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ।
1: हाँ
0: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है, हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की। तो बोले नहीं, वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो
1: अच्छा
0: सिर्फ
1: ओ
0: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था
1: हाँ
0: कि उसको
1: बिल्कुल
0: रिकॉर्ड जैसा लगा
1: क्या बात क्या
0: लेकिन
1: बात
0: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया,
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: उसको
1: जी
0: बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, ऐसा
1: हाँ
0: गाना गा। फिर वो शांत हो गया
1: क्या बात
0: आदमी
1: क्या बात। श्रोताओं की बात निकली है
0: जी
1: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में
0: हाँ
1: शोज किए
0: जी
1: हैं और विदेशों में भी किए हैं,
0: जी
1: हर शहर का श्रोता अलग होता
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल। और शुरुआत में नहीं लेकिन
1: हाँ
0: अनुभव से
1: हाँ
0: आपको मालूम होना चाहिए
1: हाँ
0: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं,
1: जी जी
0: एक साथ लागो पाठ पाँच छः शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके शाम के सामने ये करते हैं,
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: फिर दो गाने के बाद ये रात को सा फास्ट गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा
1: अच्छा
0: के नहीं आती बात।
1: अच्छा अच्छा
0: और जहाँ तक अब पहली बार भी गए
1: हाँ
0: किसी शहर में, किसी
1: हाँ
0: गांव में, छोटे से गांव में भी,
1: जी जी
0: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को,
1: ओ
0: किस
1: हो
0: प्रकार के गाने चाहिए,
1: अच्छा
0: तो वो होने से ज़्यादा अच्छा होता
1: हाँ।
0: था
1: और
0: समझ।
1: भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
0: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे, ये
1: अच्छा
0: है अच्छा
1: हाँ हाँ
0: लगता
1: हाँ
0: था, क्योंकि ये रफ़ी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं
1: हाँ हाँ
0: तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे।
1: पसंद आता
0: पहला बमिला
1: जी
0: भी
1: जी
0: अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब
1: जी
0: पूछते
1: जी
0: थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा होती थी?
0: और रफ़ी साहब का गाना एक दुगाना है,
1: हाँ हाँ
0: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
1: ओहो
0: हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो आगे आके उनको उसको एक मतलब ना, मैं बताती हूँ आपको,
1: हाँ हाँ
0: रफ़ी साहब पहले शुरू करते
1: जी
0: थे,

0: फिर जानी इसकी अरे परसों भी रहेगा अरे तरसों क्या जानी भाई आप इतना के पुना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।

0: विमला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा ना।
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
0: हाँ,
1: स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी जी
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ
1: ये होता है,
0: हाँ हाँ
1: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर,
0: जी।
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
0: हाँ
1: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी।
0: जी। अब
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
0: जी
1: से बहुत
0: जी
1: अच्छा चला
0: बिल्कुल
1: और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
0: हाँ
1: कि ऐसा
0: हाँ
1: होना चाहिए
0: हाँ
1: ऑर्केस्ट्रा।
0: जी।
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धांगड़ धींगा ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो
0: जी
1: तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
0: हाँ
1: उन्होंने मोरारजी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
0: हाँ
1: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
0: क्या
1: बहुत
0: बात है,
1: अच्छी
0: क्या
1: है,
0: बात है।
1: दूसरा कोई कहने की
0: हाँ
1: ज़रूरत ही
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल, शो
1: है।
0: में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता
1: प्रेजेंटेशन
0: हो
1: शालीनता हो
0: तो
1: ज़रूर,
0: सवाल ही नहीं, वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या
1: बिल्कुल।
0: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
0: हाँ,
1: ज़्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
0: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
1: प्राइवेट
0: बार
1: शोज़ भी
0: जी, कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे
0: किसी।
1: कंपनी के लिए, किसी
0: हाँ
1: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
0: अच्छा
1: मतलब बहुत सारी टाटा इंडस्ट्रियल आप मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी।
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी,
0: अच्छा
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट
0: जी
1: किया
0: जी जी
1: तो।
0: प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: सबका अपना अलग अंदाज होता
1: हाँ
0: है, अपना स्टाइल
1: जी
0: होता है,
1: एकदम
0: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज़्यादा आनंद आया, मज़ा आया,
1: समझ,
0: सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
1: सही
0: उनकी
1: बात सही बात।
0: विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने ज़माने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
1: हाँ जी
0: शमशाद
1: हाँ जी
0: बेगम जी के
1: हाँ
0: प्रस्तुत,
1: जी हाँ
0: वो जो एक वहाँ से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: यूँ
0: किन
1: कहूँगी
0: कंपोजिशंस में
1: कि
0: ज्यादा चैलेंजिंग लगा आपको?
1: हाँ यही मैं कहने वाली थी कि
0: जी जी
1: पुराने ज़माने के जो कंपोजिशंस थे
0: जी
1: वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा
1: हाँ अभी
0: अच्छा
1: आज का ज़माने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के ज़माने के, ऐसा मुझे लगता है,
0: अच्छा
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: पुराने जो गाने थे
0: हाँ
1: उसमें अगर जो म्यूज़िक भी था
0: हाँ
1: बीच का,
0: जी
1: वो म्यूज़िक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूज़िक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
0: जी
1: इस
0: जी
1: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
0: हाँ समझ में
1: ए
0: आता
1: ऐसा चिल्लाते थे
0: है
1: जरा
0: जी
1: भी।
0: जी
1: मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक हैं,
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी,
0: अच्छा
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफ़ी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाना है,
0: जी जी
1: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा
1: हाँ तो नंदुरवार करके गांव है छोटा
0: जी
1: सा धुलिया के पास,
0: जी
1: तो वहाँ पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ ये अच्छा ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
0: हाँ
1: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
0: हाँ
1: क्लासिकल का ज्ञान
0: हाँ
1: था,
0: हाँ
1: तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो
0: ओ
1: तो रफ़ी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो तो, लेकिन रफ़ी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
0: हाँ
1: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं
0: जी
1: मुकरी,
0: जी
1: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा,
0: बिल्कुल,
1: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
0: तो श्रोताओं के
1: अभी
0: समझ में आ
1: पुराने जो
0: जाता है
1: गाने
0: जी जी
1: बराबर उनको ए
0: बिल्कुल
1: करके चिल्लाते थे वहां से।
0: हाँ,
1: हाँ
0: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो उन्हें वैसा का वैसा वो सुनना चाहते हैं।
1: अभी वो गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए ऊपर, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
0: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
1: जी,
0: उनकी नज़र से एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
1: मिलता नहीं है, सही बात।
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल,
0: हाँ,
1: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
0: नहीं
1: तो आज ये ढुलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था,
0: हाँ,
1: सालों साल तक
0: जी।
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
0: हाँ,
1: बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, तो शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज, हाँ, 4 साल से,
0: हाँ, हाँ,
1: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूँगी, लेकिन एक काल के हिसाब से तो बदली हो जाएगा
0: जी।
1: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल,
0: हाँ,
1: और शो
0: जी,
1: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, हाँ, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
0: बात।
1: तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस,
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: एक संजय मराठे करके है
0: जी,
1: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
0: जी,
1: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है।
0: अच्छा।
1: तो ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ी,
0: हाँ,
1: लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो ज़रूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो
0: जी,
1: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको
0: जी,
1: शो जी। को।
0: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
1: विनय मांडके बोलूंगी,
0: विनय मांडके जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज हम सुनते हैं
1: जी, जी।
0: तो
1: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे, हाँ, बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच
0: अच्छा,
1: में
0: अच्छा,
1: मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
0: जी,
1: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के,
0: अच्छा,
1: तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा आया
0: बहुत अच्छे।
1: फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी, फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली,
0: हाँ,
1: तो बोला ऐसा हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों
0: अच्छा,
1: को भी मजा आता,
0: मस्ती के मूड में
1: मस्ती के
0: हमेशा
1: मूड में
0: रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए, पड़वा के शो में वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भार्गव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछते हैं कि कसे भाव तुम्हें अच्छे प्रोग्राम करता है, उड़े प्रवास कराएगा, पर गायला उभर आए तो कस करता है, मतलब नहीं अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं।
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियाँ आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो
1: पाड़ाला
0: लावणी है,
1: पिकला
0: पाड़ाला पिकला
1: अम्बा,
0: आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या
1: हाँ
0: उसका शो में
1: वो
0: शामिल होना बहुत
1: शामिल होना
0: ज़रूरी होता
1: बहुत ही
0: था।
1: जरूरी था, मस्ट।
0: हाँ,
1: और
0: तो
1: भी
0: एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: सेकंड, जरूर
0: और
1: जरूर
0: फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: Ho pauna, pauna, pauna zara thamba, ho pauna zara thamba, arghe padala piklay amba, alavai padala piklay am, ho nitvag padala piklay amba.
1: Wow.
0: कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा बोलेंगे।
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर, अरे क्या कर रहे हैं आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से, फिर जोर से एकदम जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था। उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया,
1: वाह वाह वाह,
0: उनको भी शायद
1: जी। प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर
0: हाँ
1: सुनाया करती
0: थी। हाँ।
1: और अपनी लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर,
0: मेरी लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ।

0: ये गाना बहुत उधर ज्यादा। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहाँ जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट, हाँ। वो पहनवाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाँव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाँव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नव पिक्चर ना गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उस पर। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई,
0: हाँ
1: होगी, लिस्ट बनाई,
0: हाँ
1: होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें।
1: अच्छा?
0: जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ?
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे,
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, फिर पाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह वा, वा।
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ
1: करके।
0: जी, हाँ जी,
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये करम है कि आज आप यहाँ पधारी,
1: मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी तक आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार सुनवाए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गो स्केफे को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद ज़रूरी है, जबकि कोलकाता ये मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जो संत जन प्रभु के कीर्तन को अपने जीवन का सहारा बना लेते हैं, दयालु प्रभु उन संतों को माया के तपिश से बचा लेते हैं और वे संतों की संगति करने से पवित्र हो जाते हैं।

प्रभु की रजा प्रभु ही जाने, किसको कब कहाँ क्या हासिल हो जाए, वो केवल उनके हाथ में है। मनुष्य तो केवल उनकी क्रियाओं पर आगे बढ़ता है।

भक्ति संध्या कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। युवा साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम में, और जानकारी और मनोरंजन तो आपके लिए हम हर बार की तरह लेकर आते हैं। आज का विषय है युवाओं के सपने और परिवार की उम्मीदें। आज के प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। बातचीत तो हम आपसे करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक गीत आप तक पहुँचाते हैं।

युवाओं के सपने और परिवार की उम्मीदें। युवा साथियों, आज के इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे। सपने हर कोई सजाता है और हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता है। केवल नींद में लिए हुए सपनों को ही हम सपने नहीं कहते, बल्कि सपने ऐसे हैं जो हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए देखते हैं। ऐसे सपने जो हम जागते, सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते देखते हैं। हर कोई अपने फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर चिंतित होता है। हर किसी का कोई ना कोई सपना अवश्य होता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई वकील, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई अध्यापक। हर युवा साथी अपनी क्षमता के अनुरूप कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। किसी का सपना होता है वे देश की सेवा करे, देश का प्रतिनिधित्व करे, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, यानी कि वो पायलट बनने का सपना देखते हैं।

युवा साथियों के सपनों के साथ परिवार की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं, उनके पेरेंट्स की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। ये गीत कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है और बता रहा है कि युवा क्या सोचते हैं और किस तरह का सपना वो देखना चाहते हैं।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: युवा साथियों, हमारे सपनों की नींव 10वीं कक्षा के बाद पड़ती है जब हम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से किसी विषय का चुनाव करते हैं। ये वो दौर होता है जब बच्चों में सब्जेक्ट्स को चुनने से संबंधित कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि कई बच्चों में से एक से अधिक विषयों में रुचि रखते हैं, लेकिन उन्हें किसी एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है और अपनी पढ़ाई जारी करनी पड़ती है। बच्चों के साथ साथ माता पिता यानी पेरेंट्स की भी अपनी कुछ उम्मीदें, कुछ सपने होते हैं कि हमारा बच्चा इस विषय को चुने, उसमें आगे बढ़े। ज़्यादातर का डॉक्टर यही चाहेगा उसका बच्चा डॉक्टर ही बने, या फिर वकील यही चाहेगा कि उसका बच्चा भी LLB करके उसके जैसा सफल वकील बने। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स की उम्मीदों से विपरीत सपने देखते हैं। हो सकता है एक डॉक्टर का बेटा पायलट या जज बनना चाहे, लेकिन पेरेंट्स यही उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि बेटा नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करेगा और MBBS करेगा। तो दो अलग सोच, दो अलग सपने अक्सर मानसिक तनाव को न्योता देते हैं, क्योंकि बच्चा ना तो अपनी पसंद का विषय पढ़ पाता है और ना ही अपने पेरेंट्स के चुनाव पर खरा उतर पाता है। तो कई बार इस कश्मकश में बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। माता पिता के कहे अनुसार विषय का चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने की वजह से वो नशे या गलत संगत या फिर कई बार हताशा और निराशा के चलते अपनी जान तक भी गंवा देते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को उनकी पसंद का विषय चुनने दें, अपनी पसंद उन पर न थोपें, उनकी छोटी छोटी बातों को महत्व दें, प्यार भी जताएं और उनकी उम्मीदों को पंख दें, ना कि उनकी उड़ान में बाधा बने।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

बंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई। पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
0: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
3: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
6: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
5: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
6: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
5: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
6: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: युवाओं के सपने और परिवार की उम्मीदें, इस विषय पर हम आज अपने युवा साथियों के साथ बात कर रहे हैं। युवा साथियों, जीवन की नींव रखने का ये महत्वपूर्ण समय होता है, और जब पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही असमंजस की स्थिति में होते हैं, यानी कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि क्या किया जाए और क्या नहीं। बच्चे जिस विषय को चुनते हैं, उनमें लगन से, मेहनत से अपने सपने को साकार करने का अवसर उन्हें मिलता है, लेकिन जितनी मेहनत स्टूडेंट्स करते हैं, उतनी ही मेहनत उनके माता पिता भी करते हैं, क्योंकि बच्चों की मेहनत में भी वो बराबर के भागीदार होते हैं। समय पर खाना पीना, सुख सुविधाएं, आवश्यक की चीज़ें पेरेंट्स ही उपलब्ध करवाते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी एडवर्स या विपरीत क्यों ना हो, वो अपनी तरफ से अपने बच्चों के लिए दी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मिला जुला ये दौर, ये सफ़र, ये समय रहता है जिसमें परिवार, आसपास का वातावरण और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टूडेंट्स की मेहनत इसमें रहती है।

आज के दौर में बहुत से बच्चे खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉलर या फिर कोई एथलेटिक्स में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ उनके इन सपनों को भी पूरा करने का मौका दें। युवाओं के सपने और परिवार की उम्मीदें आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं, जो अक्सर वर्षों की मेहनत, भावनाओं और भविष्य की सुरक्षा का बोझ लेकर चलती हैं। युवाओं के लिए सफलता का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि परिवार के गौरव और उनकी उम्मीदों को पूरा करना होता है। ये सपना अच्छी शिक्षा, स्थिर करियर जैसे चिकित्सा, सरकारी नौकरी और एक सम्मानजनक जीवन से जुड़ा होता है। युवा वर्ग न केवल आज का वर्तमान है बल्कि कल का भविष्य भी है, जिस पर देश और परिवार की प्रगति दोनों टिकी होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान युवा वर्षों की मेहनत करते हैं और परिवार की सारी उम्मीदें इन पर टिकी होती हैं। युवाओं के सपने और परिवार की उम्मीदें एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये संतुलन युवाओं को प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी वो देता है।

जाने में तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर का, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दें इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सदाबहार संगीत। मौजा ग्रहिंदियां कार्यक्रम में शाम 6:30 पर बातचीत की जाएगी चेरी और पलम की खेती बाड़ी के बारे में। शाम 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर किसान वाणी कार्यक्रम में बात करेंगे खुम्ब उत्पादन हेतु प्रशिक्षण इस विषय पर। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनेगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात 9:00 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से हिमदर्शन कार्यक्रम। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से चित्र भारती कार्यक्रम और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोता ये तो थी रूपरेखा आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। आइए अब एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:10 पर सुप्रभात कार्यक्रम में आज विशेष के साथ साथ जानकारी साझा करेंगे विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, पर्यटन स्थल में बात करेंगे चांशल पास के बारे में और पर्यावरण में बात होगी उपयोगी पुष्प गुलबहार के बारे में। कल दोपहर 12:30 पर नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा और बातचीत का विषय रहेगा बच्चों को सिखाएं आत्मरक्षा के गुण, साथ ही में कुछ रोचक जानकारियां भी साझा की जाएंगी। कल शाम 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम में मेरी पसंद विषय के अंतर्गत कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। ये तो थे कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और रिले के लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतज़ार।

प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीए सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने कल प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग पार्टियों को गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया है। शहरी निकायों को लेकर प्रदेश में 439 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए जा रहे हैं। शहरी निकाय चुनाव में लगभग 380,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों सहित प्रदेश के 51 शहरी निकायों के लिए कल सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी और कल शाम तक ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी निकायों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी उतारे हैं और सभी शहरी निकायों का संतुलित विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
1: चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हम शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने एक पूरा रोड मैप जो है वो जनता के बीच में रखा है कि किस तरीके से हम शहरी विकास के लिए कार्य करेंगे। उसमें चाहे पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, हाइड्रोलिक पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, सीवरेज सिस्टम का डेवलपमेंट होना है, और हमने हमेशा केंद्र से हिमाचल के, चाहे वो मेरे पीडब्ल्यूडी से संबंधित मसले हैं, वैसे ही शहरी विकास में भी, उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने भी नगर निगम चुनावों में अपनी जीत का दावा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने शहरी निकायों में विकास कार्यों की अनदेखी की है और लोगों को झूठी गारंटियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत से विकास का नया दौर शुरू होगा और जनता को कांग्रेस सरकार की विफलताओं से मुक्ति मिलेगी। बिंदल ने कहा कि भाजपा की जीत के बाद नगर निगमों में पेयजल, पार्किंग, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में मतदान को लेकर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। जिले में धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों के अलावा अनेक नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की पार्किंग या अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने जिला के सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है।
2: जो पोलिंग डे का टाइम है, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक पोलिंग का टाइम है। उसके बाद जो ईवीएम्स हैं, वो ईवीएम्स को सील किया जाएगा और जो नगर निकाय में जो नगर निगम हैं उनको छोड़कर बाकी की काउंटिंग वहां पर, जो तय काउंटिंग स्थल है वहां पर काउंटिंग की जाएगी। सारे जगह पोलिंग पार्टीज हमारी मूव कर चुकी हैं। सभी से समान रूप से अनुरोध है कि सब आएँ और अपने मत का प्रयोग करें।
0: शहरी निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां जारी है। राज्य में इस बार 26, 28 और 31 मई को 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव करवाए जा रहे हैं। सिरमौर जिला में 28 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और सरकार द्वारा इन्हें 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिले में कुल 3,909 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
3: जिला परिषद में टोटल 53 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करेंगे। पंचायत समिति टोटली 36 प्रधानों के उसमें जाते हैं और 8 ब्लॉकों के जो टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो 8-6 हैं। जिला सिरमौर में इस बार 28 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने निर्विरोध ग्राम पंचायत की सूची में ये जो शामिल हुई हैं।

0: शिमला शहर में सेहत सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चुनाव आचार संहिता के बाद 10% वेतन वृद्धि का फैसला लिया जाएगा और वे सफाई कर्मचारियों की सभी जायज समस्याओं को मुख्यमंत्री व शहरी विकास मंत्री से उठाएंगे।
1: किसी के बहकावे में आकर के आप ये इन चीजों को मत करिए, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? गार्बेज जो कलेक्टर है उसका होता है। सफाई व्यवस्था का होना यहाँ बहुत जरूरी है। आप जल्द से जल्द इस हड़ताल को वापस करके, इस तरह से वो करना, शिमला का नाम खराब करना कोई अच्छी बात नहीं है। नगर निगम के इतिहास में 30 लाख तक का इंश्योरेंस मैंने करवाया, जो शायद इन्होंने कभी मांग नहीं रखी थी मेरे पास। 7 डेज की छुट्टी हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दी। एजीएम में जो कह रहे हैं कि 10% हमारी वृद्धि का जो फैसला है एजीएम में होता है, हमारा भी कोड ऑफ कंडक्ट है। जल्द से जल्द में एक ही सिंगल उसको लेकर के जा सकता हूं, मैं एजीएम करवाऊंगा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सदाबहार संगीत। रुककर सूरज कभी देखता है नहीं, तभी तो शाम सजती है उसके लिए। सुरमई सांझ का मीठा सा नमस्कार और हम हाजिर हैं सदाबहार संगीत के साथ। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा।

धर्मेंद्र और आशा पारेख की अभिनीत फिल्म में से यह मीठा सा गीत अभी आपने लता मंगेशकर और आशा भोंसले के युगल सुरों में सुना। इसमें मन के भावों को बहुत ही खूबसूरती के साथ सुरों में पिरोया गया, जिसके लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, गीतकार आनंद बख्शी। सदाबहार संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। बहारें फिर भी आएंगी, इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार अनजान, संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
1: Nexa.
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa.
4: Diesel kyun choose kar rahe hain? Jab स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
5: सदाबहार संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: सन 1964 में रिलीज़ हुई फिल्म अप्रैल फुल का बहुत ही लोकप्रिय गीत अभी आप सुन रहे हैं और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सायरा बानू और विश्वजीत हैं। गीत के बोल के हंसर जयपुरी ने, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। सदाबहार संगीत की अंतिम पेशकश डॉन फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: आहा। और

किनारे। किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ आज का सदाबहार संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए इजाजत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजें गराएं दिया।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां लेई करी हाजिर हन मैं ग्राम सेवक कने मेरे कने हन
1: चुन्नीताई
0: ता असा दोनों ही टियाले पर हाजिर होई चुके न मीठी मीठी गलबात लेके और प्यारे प्यारे लोक गीत ले करी है ना ता साड़ी दोनी दी तरफ ते सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई पैना जो राम राम कने और चुन्नी ताई सुना भाई क्या हाल चाल है।
1: बिल्कुल ठीक दिखा ठंडी हवा चली है त्याले पर
0: ठंडी हवा चलनी है महाराज मिंजो तो थोड़ा चादरू सिन्ना लगा था बरखा तो नहीं पई थोड़े पर मिंजो पता था कि बरखा पई है कहना चुन्नी ताई से जी ये होने ना
1: हां जी हां जी
0: दिखा एक फ्रैट तक खरी पेगी जोरे दी
1: कने थोड़ी जड़ी गर्मी हुई है कटी है कने ठंडक वाला मौसम हुई है
0: ठंडक वाला मौसम तो ठीक ला दे तुसा होया ना पर इया थोड़ा थोड़ा डर नहीं लगा था
1: हां
0: पर डर लगा था क्योंकि बरसात ना शुरू हुई है
1: लगा था कुछ ऐसे ही है
0: कने देखा बरसाती था भाई एथु बड़ा भारी नुकसान हुआ करदा ना पिछले देखा एक दो साल की अगर हां गल करिए ना तो बड़िया ज्यादा बरखा हुई कने बड़ा नुकसान
1: होया फसलों का नुकसान होया
0: फसलों का भी नुकसान होया है ना बड़िया गारिया गई फिर जमीन च इतनी ज्यादा स्लाइडिंग इतने ज्यादा फ्लड्स आए है ना भाई लोग तो इं डरी डरी सुनते हे अपने घर पे
1: पता नहीं लगता कुछ मौसम दा ना आजकल कुछ मौसम खराब जे हुई है पता नहीं लगा था कुछ भी
0: जी बिल्कुल ठीक ला दे तुसा कने इस दे कने ही जड़ा ऐसे दिखा कार्यक्रम
1: करनी है
0: गलबात भी करनी है
1: गलबात चाहा करनी है प्लम कने चेरी दी खेती दे बारे च जी तो जानदे हन कि प्लम जेड़ा है घट लागत कने घट जोखिम वाली कने ज्यादा लाभदायक फसल भी मनी जाती है तिया ही चेरी दी खेती भी बड़ी अच्छी कने बड़ी फलदायक मनी जाती है कने इसकी मतलब पैदावार भी अच्छी होंगी कने इसकी जड़ी है आर्थिकी भी इसने खरी मजबूत होंगी है चेरी की खेती तो साढ़े किसान कने बागवान भाई ऊंचाई वाले क्षेत्रों च खरी कमाई करी सकते हैं कने करा दे भी हैं चेरी के पौधे उतों पानी के जमाव कने स्टेल वाइट हार्ट वेन पिंक अर्ली नेपोलियन वाइट लैम्बर्ड आदि किस्म भी उगाई जाती हैं चेरी की खेती करने वास्ते ठंडी जलवायु जरूरत पौंदी है कन चेरी दी फसल मुख्यतः शिमला कुल्लू मंडी किन्नौर लाहौल
0: गलाने का मतलब है भी जेड़े ठंडे इलाके हैं ना
1: उत्थों
0: खरी फसल होंगी कने बड़ा मुनाफा जड़ा ऐसा साड़े किसान भाई इस दी खेती करके करी सकते हैं ना
1: कंथुआ दिखा सेब ते बाद चेरी कने प्लम दी खेती जेड़ी है ऐसे बागवान वास्ते
0: आए दा शानदार तुहाड़ी चुन्नी ताई में तुहाड़ी गल टोका दा ये जेड़ा प्लम हुंदा ना इसी अहां आलू बुखारा भी बोलदे इत्थों दे ना कने महाराज तां दे साड़े ग्रां दे लोग ना लूचा भी बोलदे ने हां तां ये जेड़ियां ए देसी भाषा ना इन्हां च ही अगर अहां समझिए तां इन्हां दी खेती करके जेड़ा ऐसे साड़े किसान भाई अपनी आर्थिकी जो सुदृढ़ करी सकते हैं ना
1: लेकिन जब लोग तुम प्लम कने चेरी दी खेती कर तो उसकी मिट्टी दी गुणवत्ता की जांच कराई उन्होंने कि किसा इसा मिट्टी च कोई कमी पेशी ना रहेगी होए कने मिट्टी जड़ी मिट्टी दी जड़ी पैदावार क्षमता से अच्छी होनी चाहिए गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए
0: जी बिल्कुल
1: कने जब लोग तुम कटाई करनी है तो उस फल दिखना है कि से रंगीन होना चाहिए कने सुगंधित होना चाहिए चाहे से चेरी होए चाहे से आलू बुखारा होए प्लम होए ता ही उसकी कटाई करनी चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल तुम ठीक गला दे तो दिखा ये तो हाँ गल करा दे बे चेरी कने पलम दी खेती करी के जड़ा ऐसे साड़े किसान भाई अपनी जड़ा ऐसा फायदा ले सकते ना इस दे कन्ने कन्ने चुन्नी ताई दिखा खेती बाड़ी ने और भी कई सारी बागवानी कई सारी खेती बाड़ी दे पेड़ पौधे हैं जिन्हें असा लगाई के अपनी आमदनी जो बधाई सकते ने ना
1: ता गल्लबातां तां जारी रखनियां ने पर सुनना पहले
0: एक संदेश है ना जी फिर एक प्यारा दिया लोक गीत भी सुन लेना है ना जी जी जी
2: Built into every arrival. This may drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.

0: integration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: वाह जी, बड़ी छैल गल बात हुई, गाना सुने मजा आई है जी।
4: जी चुन्नी ताई कने देखा, लोक गीतां दी भी एक अपनी ही मिठास हुंदी है ना, और सुनी के इ'यां मतलब इ'यां अंतर मन जेड़ा ऐसे बिल्कुल शांत होई जांदा, खुश होई जांदा है ना।
3: हाँ जी,
4: कने बड़ी मतलब यह है कि शांति मिलती है।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: और चुन्नी ताई यहाँ गलबात करा दे, ये देखा बागवानी दी है ना, पेड़ पौधे लगाने दी।
3: हाँ
4: जी। ता ये तो ठीक है कि यहाँ पेड़ पौधे लगाई दे ना, एक बार यहाँ पेड़ पौधे लगाई ते, लेकिन दिखा अगर हाँ तिना पेड़ पौधे की देखभाल नहीं कर गे ना, तो भाई लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, है ना। तो पेड़ पौधे जालू अहाँ लगाते हैं, तो इस कने एक चीज़ सो भी रखनी है ध्यान च कि असा अपने पेड़ पौध्या जो संरक्षित करना है, अपने पेड़ पौध्या जो बचाना है, ताजे से एक ऐसी जिसे अहाँ स्टेज बोली सकते, एक ऐसी स्टेज तक पुजिया न जितू तेना जी ऐसा कोई उजाड़ ना हो, कोई डंगर बच्चू भेड़ बकरी जी ऐसा इसे कोई नुकसान ना करी सके, है ना।
3: जी भी अस कोई पेड़ लगाते हैं बागवानी बिच, तो पहले दो साल यानी कि दो गर्मियों बिच हाँ जो गहराई कन्ने फल दे पौधे जो पानी देना पौंदा, कन उस त्रीय साल जल सुखा पौंदा तल ही तुहां हल्का भी पानी देंगे, थोड़ा घट भी देंगे, तो सह चली जाता है। कन्ने ज़्यादा पौधे जियां ज़्यादा तुहाड़े पौधे च फल लग गया तो तुहां पक्षी जड़े हैं सह ठूंका मारिंदे या कुछ करिंदे, कीड़ू लगी जांदा है, तो तुहां चाहिदा कि तुहां एंटी हेल नैट जड़ी होंदी है, जड़ी नेट जालियां मिलदी हैं, सह तुहां फलदार पौधे च लगाई सकदे हैं।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, ता इस तरह अहाँ अपने पेड़ पौध्या जो संरक्षित करना है, बचाना है, और तिना दी निराई गुड़ाई कटाई छंटाई ये भी टाइमे टाइमे पर जड़ा ऐसे करते रहना है ना। ता थोड़ा दिया विराम अपनी गलबात जो फ्री देना है, कने एक संदेश, कने फ्री एक प्यारा दिया लोकगीत।
5: चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की, आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यू।

0: जी ता चुन्नी ताई दिखा, कितना बांका, कितना प्यारा लोकगीत था, है ना जी।
1: मजा आई है।
0: और लोकगीत सुनी के ता इं लगदा कि भाई असां दी जड़ी सारी थकान है ना दिन भर दी सै
1: दूर
0: उतरी
1: हो
0: गई है
1: जाती
0: ना।
1: है, दूर हो जाती है। हाँ जी,
0: कन आहा इं थोड़ी दी गल करिए ता कुछ एक उपरी जड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं ना साढ़े,
1: हाँ
0: ते
1: जी,
0: तू अली तक भी जड़ा ऐसा कणका बढ़ाइया दा काम पिया, कणका गुआइया दा काम पिया, ता तिथु साढ़े किसान थोड़े दे परेशान होआ करदे
1: क्योंकि
0: इस
1: जड़ी
0: मौसम दी
1: बारिश
0: वजह ने।
1: बारिश
0: हाँ
1: हुई है तो फसल खराब हो गई ना।
0: जी बिल्कुल। ता भई तिना ने यही गुजारिश है कि दिखा मौसम दिखी के ही अपने खेती बाड़ी दे काम जड़े ऐसे करा, है
1: कर
0: ना,
1: हाँ जी,
0: क्योंकि मौसम ने जड़ा ऐसा है कुसी दी कोई सेखी नहीं है, कोई कुसी दा बस नहीं चली सकता, है ना।
1: हाँ जी,
0: ता इस करके अपनी जड़ी कणक बड़ी हुआ है तिसी ढकी के रखा, है ना, कने जल धूप लगती है तो तिसी सुकाई
1: सुखाई
0: के,
1: रखो,
0: कने
1: बढ़ाई।
0: कोशिश करा कि भाई जल्दी से जल्दी जड़ी ऐसा इसकी गहाई भी कर लिया,
1: हाँ जी, हाँ
0: है
1: जी,
0: ना, क्योंकि ये जड़े खेतीबाड़ी दे काम आने ये पूरे पूरे साले दी अहां मेहनत गलाई सकते हैं ना, इतने दिन दी मेहनत होंदी, कने अगर अहां इस दी थोड़ी दी लापरवाही बरती हैं तो साड़ी
1: फसल
0: फसल जड़ी
1: खराब
0: से
1: खराब हुई
0: खराब हो
1: है। हाँ
0: सकती है ना।
1: जी,
0: तो ये कुछ गल्लां ने जिन्हें असां ध्यान रखना चाहिए, कने अपने खेतीबाड़ी दे काम जड़े से अहां यो अपने टाइमे टाइमे पर करना चाहिए, कने मौसम दिखी के करना चाहिए, क्योंकि अजकल तो जो पता ही है भाई मौसम विभाग जड़ा ऐसा दसींदा भी कालू बरखा होनी है, कालू धुप्प होनी है, कालू क्या होना, है ना
1: हाँ जी, हाँ जी, तो
0: जी।
1: इस करने टाइम कार्यक्रम खत्म करने का टाइम होता दसी दिए कार्यक्रम जो तकनीकी सहयोग दिता सुरेंद्र कपूर ने, कार्यक्रम प्रस्तुत करता जितेंद्र सिंह पाल, उन टियाले दी चुन्नी ताई कने ग्राम सेवक उद्दे अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: मौजा अग्राई दिया कार्यक्रम श्रोता भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, जिसमें 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे।
1: विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में आठवें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis.
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: Highlighting global efforts to strengthen economic resilience, the Prime Minister said, India and the Netherlands are jointly focusing on building robust supply chains. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Economic Offences Wing, EOW, of Delhi Police has busted a Goods and Services Tax, GST, fraud cartel and has arrested six people. Addressing the press conference, Additional Commissioner in EOW, Ravi Kumar Singh, said that the accused were operating fake firms. He informed that accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He said that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET undergraduate 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandare, is a senior botany teacher from Pune, Maharashtra. CBI said that she was involved in the NEET undergraduate 2026 examination process and was appointed as an expert by the National Testing Agency. The investigation agency said that the accused had complete access to the botany and zoology question papers. The Ministry of Education has expressed serious concern over the growing number of out-of-school children in the country, especially in the 14 to 18 year age group. A high-level meeting chaired by School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar discussed the issue and reviewed the implementation strategy for a proposed new initiative by the National Institute of Open Schooling. During the meeting, Mr. Kumar said that according to available data, out of every 100 children entering class 1, only 62 reach class 12. He noted that more than 2 crore children in the 14 to 18 years age group are currently out of school.
3: India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam, Meghalaya and South Interior Karnataka during the next 2 days. According to IMD, similar conditions will also prevail over Arunachal Pradesh, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals in the women's 77 kg category. And that is the end of this news bulletin.

0: कार्यक्रम किसान बाणी जो लेके एक बार फिर ते हाजिर हो गए तुहाड़े अपने इस कार्यक्रम च। मैं जुनीताई कने मेरे कन साध्या दे ना
1: जी ग्राम
0: ग्राम
1: सेवक,
0: सेवक।
1: ता सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई पैणा जो सारे श्रोत्या जो ग्राम सेवक दी राम राम, कने चुन्नी ताई एक बारी फिरी तुहांजो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम, कने
0: श्रोतियों तुहाड़ा इस कार्यक्रम च बहुत बहुत स्वागत।
1: जी बिल्कुल एक बारी फिरी स्वागत कर देना हाँ अपने सारे किसान बागवान भाई पैणा दा, कने मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोक गीत ले करी कने ढेर सारी जानकारियां ले करी एक बारी फिरी हाजिर हो ही चुके हैं टियाले पर। ता देखा चुन्नी ताई आज टियाला साड़ा थोड़ा सिन्ना सिन्ना है ना,
0: हाँ जी
1: साड़े बिन्ने भी सी जी यो ना अज
0: हाँ जी हाँ
1: कही
0: जी
1: की है जड़ा तड़कांज पे ना बरखा दा, इस कने अहां देखा आज पूरा इंतजाम नहीं था कित्ते आई हैं, अचानक ही वर्खा आई गई है ना,
0: हाँ जी
1: ता इस वर्खा कने जड़े साड़े बिन्ने भी सी जी ये, पर चलो हुण क्या करना भाई बैठना तो पौना ही है ना।
0: हाँ जी
1: हाँ ता इस
0: संजय दिया
1: जी
0: बेला
1: जी जी
0: कुछ जड़ियां जानकारियां हाँ थोड़े कन्ने सांझा करनी है। सह है ना खूब उत्पादन हेतु प्रशिक्षण असा किया ले सकते हैं तो
1: जी
0: किसान साथियों हिमाचल प्रदेश की कृषि जड़ी है कृषि जलवायु जड़ी है खूब की खेती वास्ते बहुत ही उपयुक्त है। पर इसके अलावा प्रदेश च प्राकृतिक परिस्थितियां वास्ते खूब उत्पादन की अपार संभावना है। साढ़े प्रदेश च दो तरह के खूब यानी कि मशरूम की खेती ज़्यादातर हो की जाती है। पहला है सफेद बटन खूब खुंभ, दूजा धान ग्रीन खुंभ। ये दोनों खुंभा व्यवसायिक खेती का तकनीकीकरण करने वास्ते पहली परियोजना खुंभ विकास परियोजना चंबा घाट जिला सोलन कने दूसरी परियोजना पालमपुर जिला कांगड़े च शुरू की गई थी। प्रमुखता के तौर पर पंजीकृत खुंभ उत्पादक जो शिमला सोलन सिरमौर किन्नौर कांगड़ा चंबा हमीरपुर ऊना कने बिलासपुर जिले च खाद उपलब्ध कराई जाती थी जिससे मुख्यतः लघु कने सीमांत किसान कने बेरोजगार स्नातकों जो भी प्राथमिकता दी जाती है।
1: जी बिल्कुल चुन्नी ताई तो हाँ गल तो बड़ी बांकी गलाई है खुंभ उत्पादन ना, पर एक चीज मैं तो जो दसा
0: हाँ जी
1: ये दिखा है भाई ये दिखा ये क्या है
0: ये भी
1: पिंदड़ियाँ पिंदड़ियाँ नहीं है पिंदड़ियाँ
0: अच्छा
1: है ना,
0: अच्छा
1: तो दिखा ये पिंदड़ियाँ जड़ियाँ ना ये भी एक इस तरह ही
0: खुंभ
1: एक
0: दी
1: ऐसा
0: प्रजाति है।
1: प्रजाति है ना,
0: हाँ जी
1: कने दिखा ये साढ़े स्याणे गलांदे वालू चल बड़े गड़क्के होंगे ना गड़क्के
0: हाँ जी
1: अंबरां च,
0: हाँ जी
1: तो गड़कियां ने ये पिंदड़ियां जड़ियां सह पैदा होंगे ना धरती च,
0: हाँ
1: कने
0: जी
1: भाई खाने वो कच्ची भी स्वाद कने सब्जी भी स्वाद
0: हाँ जी हाँ
1: कने
0: जी
1: पौष्टिक भी बड़ी है ना।
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी
1: दिखा कुछ खुंभ प्रजातियां ऐसियां न जिन्हें यो असा यो प्राकृतिक तौर पर मिली जाती जियाँ बने च अहाँ टट मोर होंगे है ना,
0: हाँ जी हाँ
1: फिर
0: जी
1: इसे गुच्छी होंगी टट
0: गुच्छी
1: मोर
0: था
1: है ना, है ना
0: वो ठंडी जलवायु जो होती है
1: हाँ, फिर इसे बोलते ना कई तरह के और जेड़े
0: खूब
1: जंगली
0: प्रजाति
1: जंगली
0: हाँ
1: मशरूम होंगे पर सारे खाने लायक नहीं होंगे,
0: नहीं होते
1: ये भी
0: हाँ
1: ध्यान रखने वाली गल
0: हाँ
1: है।
0: जी हाँ जी
1: तो खुंभ दियाँ बड़ियाँ प्रजातियां ने, कने हूँ तो देखा खुंभ दियाँ ऐसिया ऐसिया प्रजातियां आई गई ने जड़ी जे अहाँ बीज मिली जाते कने तेना यहाँ अपने व्यवसायिक तौर पर जड़ा ऐसे अपने घरे जड़ा ऐसे उत्पादन करा कर दे है
0: हाँ
1: ना
0: जी हाँ जी
1: जी।
0: कने
1: तो
0: तू दूजी गल है कि अगर श्रोते असा हूँ प्रदेश च खुंभ की खेती बारे प्रशिक्षण बारे गल करिए तो साढ़े भाई भैन जो 7 से 10 दिन का प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिस विच खुंभ की खेती करने वास्ते खुंभ की खेत तकनीकी जानकारी दी जाती है कने प्रशिक्षण भत्ते का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। खुंभ की खेती के प्रशिक्षण वास्ते प्रदेश दी महिला कने सीमांत किसानों जो प्राथमिकता दी जाती है कने उन्हों का वर्ग का पंजीकरण भी किया जाता है।
1: जी तो देखा इतनी सारी सहूलतें इतनी सारी सुविधाएं सांझो मेला कर दी है ना,
0: कने दूआ कोई शुल्क नहीं लगती है
1: हाँ कोई पैसा नहीं लगना कोई धेला नहीं लगना, कने सरकार सांझो जड़ा ऐसा आत्मनिर्भर बनाने तें जड़ा ऐसा
0: प्रयासरत
1: प्रयास
0: है
1: करा करा दिए। तो देखा हाँ भी चाहते कि भाई साढ़ा किसान जड़ा ऐसा एक खुशहाल किसान बने है ना, तो खुंभ उत्पादन वास्ते जरूर जड़ा ऐसा प्रशिक्षण ले करी अपना व्यवसाय शुरू करना है
0: कर अपने
1: और
0: आजीविका जो सुदृढ़
1: जी
0: करना है। हाँ
1: जी।
0: जी
1: तो
0: तब
1: देखा इस दे कने ही जड़ा ऐसा है एक लोक भजन जड़ा ऐसा है हाँ सुनना है कने फिर ही अगली गलबात कर देना
0: तो वो सुनते हैं भजन।
1: जी।

0: जी भाषण जा दी बेला हो कने माता दा जयकारा हो जाए इसते बाद हो क्या हो सकता
1: जी
0: है।
1: जय माता दी जी। कने दिखा इस कने जड़ा ऐसा साढ़े कार्यक्रम दा समय इथों ही संपन्न हुआ करता है। जाने ते पहले दस्ती है कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर और कार्यक्रम प्रस्तुति जतेंद्र पाल सिंह। हुण असा दोनी जो कार्यक्रम संपन्न करने दी दिया अनुमति।
0: अच्छा
1: अच्छा जी
0: जी जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:42 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। मतदान को बताया जिम्मेदारी व गौरव का प्रतीक। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां तेज। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी मैदान में। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सहब सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों से की हड़ताल समाप्त करने की अपील। और धर्मशाला में कल RCB व पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा IPL का अहम मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कल प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग पार्टियों को गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया है। शहरी निकायों को लेकर प्रदेश में 439 पदों के लिए 1,147 उम्मीदवार मैदान में है। नगर निगम के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच माना जा रहा है। नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए जा रहे। शहरी निकाय चुनाव में लगभग 3,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों सहित प्रदेश के 51 शहरी निकायों के लिए कल सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि मतदान के दिन मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर किसान पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाया जा सकता है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव शहरों व कस्बों को बेहतर नागरिक सुविधाएं और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि मतदान केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पहली बार मतदान करना राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी और गौरव का प्रतीक है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी निकायों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी उतारे हैं और सभी शहरी निकायों का संतुलित विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
1: चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हम शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एक पूरा रोड मैप जो है वो जनता के बीच में रखा है कि किस तरीके से हम शहरी विकास के लिए कार्य करेंगे। उसमें चाहे पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, हाइड्रोलिक पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, सीवरेज सिस्टम का डेवलपमेंट होना है, और हमने हमेशा केंद्र से भी हिमाचल के, चाहे वो मेरे PWD से संबंधित मसले हैं, वैसे ही शहरी विकास में भी, उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने भी नगर निगम चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने शहरी निकायों में विकास कार्यों की अनदेखी की है और लोगों को झूठी गारंटियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत से विकास का नया दौर शुरू होगा और जनता को कांग्रेस सरकार की विफलताओं से मुक्ति मिलेगी। बिंदल ने कहा कि भाजपा की जीत के बाद नगर निगमों में पेयजल, पार्किंग, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में मतदान को लेकर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। जिले में धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों के अलावा अनेक नगर परिषदों व नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की पार्किंग या अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने जिला के सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है।
2: जो पोलिंग डे का टाइम है सुबह 7 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक पोलिंग का टाइम है। उसके बाद जो ईवीएम्स हैं वो ईवीएम्स को सील किया जाएगा और जो नगर निकाय में जो नगर निगम है उनको छोड़कर बाकी की काउंटिंग वहां पर जो तय काउंटिंग स्थल है वहां पर काउंटिंग की जाएगी। सारे जगह पोलिंग पार्टीज हमारी मूव कर चुकी हैं। सभी से समान रूप से अनुरोध है कि सब आएं और अपने मत का प्रयोग करें।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनका कल नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने का कार्यक्रम है, जहां वे 18 मई को

0: केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का 19 मई को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नगर निगम सोलन में मतदान के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 14 मतदान केंद्रों का जिम्मा महिला कर्मचारियों को सौंपा गया है। शहर में 7 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। उन्होंने शहर के सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है।
1: नगर निगम सोलन का चुनाव है, उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें हमारे जो शहर में इस वक्त 38 पोलिंग बूथ्स बनेंगे, इस बार हमने 14 पोलिंग बूथ्स जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। ये प्रयत्न किया है कि महिलाओं को इस चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एडेक्वेट पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं। और मैं सभी सोलन निवासियों से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने मतदान का प्रयोग करें और भारी संख्या में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल कर मतदान अवश्य करें।
0: शहरी निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां जारी हैं। राज्य में इस बार 26, 28 और 31 मई को 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उधर सिरमौर जिला में 28 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और सरकार द्वारा इन्हें 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिले में कुल 3,909 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
2: जिला परिषद में टोटल 53 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करेंगे। पंचायत समिति टोटल 36 प्रधानों के उसमें जाते हैं और 8 ब्लॉकों के जो टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो 8-6 हैं। जिला सिरमौर में इस बार 28 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने निर्विरोध ग्राम पंचायत की सूची में ये जो शामिल हुई है।
0: शिमला शहर में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चुनाव आचार संहिता के बाद 10% वेतन वृद्धि का फैसला लिया जाएगा और वे सफाई कर्मचारियों की सभी जायज समस्याओं को मुख्यमंत्री व शहरी विकास मंत्री से उठाएंगे।
3: किसी के बहकावे में आकर के आप ये इन चीजों को मत करिए, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? गार्बेज जो कलेक्टर है उसका होता है। सफाई व्यवस्था का होना यहाँ बहुत जरूरी है। आप जल्द से जल्द इस हड़ताल को वापस करके इस तरह से वो करना, शिमला का नाम खराब करना कोई अच्छी बात नहीं है। नगर निगम के इतिहास में 30 लाख तक का इंश्योरेंस मैंने करवाया, जो शायद इन्होंने कभी मांग नहीं रखी थी मेरे पास। 7 डेज की छुट्टी हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दी। ईजीएम में जो कह रहे हैं कि 10% हमारी वृद्धि का जो फैसला ईजीएम में होता है, हमारा भी कोड ऑफ कंडक्ट है। जल्द से जल्द में एक ही सिंगल उसको लेकर के
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। यह दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस मौके पर नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। जेपी नड्डा ने डेंगू के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में कल आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने आज जमकर अभ्यास किया। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। अंक तालिका में आरसीबी 16 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे ये मैच जीतना जरूरी है। धर्मशाला में कल होने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने मैच देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के वाहनों के लिए अलग से वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। मतदान को बताया जिम्मेदारी व गौरव का प्रतीक। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर भी गतिविधियां तेज। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी मैदान में। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सहब सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों से की हड़ताल समाप्त करने की अपील। और धर्मशाला में कल RCB व पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा IPL का अहम मुकाबला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं, लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

करण ओजला को अभी आपने इस पंजाबी गीत में सुना। मिले जुले गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए आशीष कौर और जुबिन नौटियाल को।

8:05 हुए हैं। आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। अब लीजिए सुनिए दिलजीत दोसांझ, सुखबीर और ध्वनि भानुशाली के मिली जुली आवाजों में ये पंजाबी गीत।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को इस गजल में।

सत्येंद्र सरताज के गाए इसी गीत के साथ आज का विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

0: हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने
1: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या, रात 9 News@9 रिले की जाएंगी।
2: संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जाँच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तक उपलब्ध कराए जाएंगे प्रवेश कार्ड और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह, लाहौल स्पीति जिले की 17 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होने वाले मतदान के लिए 15 मई को खुलेआम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में चुनाव प्रचार किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि सोलन शहर की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: कांग्रेस पार्टी के चारों नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है और हमारे जो 1.5-2 साल का वक्त है, सभी जगह पैसे की स्वीकृति हो चुकी थी और हमने 3 और नगर निगम बनाए हैं। मेरा मानना है कि 16 नगर निगम में हमने जो कार्य की स्वीकृति दी थी, उस पर अभी कार्य शुरू होने हैं। 16 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व लड़ाएगी।
0: दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी सोलन में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सोलन सहित राज्य के अन्य स्थानों पर शहरी निकाय चुनाव में भाजपा की जीत होगी।
2: ये चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन, झूठी गारंटियां, उसके खिलाफ जनता के मन में जो रोष है वो निगम के चुनावों में दिखेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या पंचायती राज के चुनाव, इन सब में एक गुस्सा जो जनता के मन में है वो फूट कर बाहर आएगा। चार शीट आज हमने जारी की है जहां कांग्रेस के घोटालों से लेकर उनके दिवालियापन के बारे में बताया गया है। हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, नगर परिषद के चुनाव हम सारे जीतने वाले हैं और बाकी जगह भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। उन्होंने नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को IGMC शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल इकाई द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। इस बीच अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल इकाई ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है।
4: अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने हिमाचल प्रदेश के महिला हितों को ध्यान में रखते हुए कमला नेहरू अस्पताल की शिफ्टिंग को लेकर के और जो सरकार ने जो गायनी की OPD IGMC के लिए शिफ्ट की है उसको ध्यान में रखते हुए और महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में हम लोगों ने PIL की थी, जिसमें आज पूरी तरह से माननीय न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जो फैसला है माननीय हाई कोर्ट का, इसका स्वागत करती है और महिलाओं के हित में जो हम लोगों ने पिछले एक महीने से लेकर के जो आंदोलन किए हैं ये आज उसकी जीत है।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों को वापस लेने की अंतिम तिथि 15 मई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य में इस बार पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जा रहे हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना 31 मई को की जाएगी। प्रदेश में कई ऐसी पंचायतें हैं जो निर्विरोध चुनी गई हैं। लाहौल स्पीति जिले में 17 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। इनमें से 8 पंचायतें लाहौल और 9 पंचायतें स्पीति घाटी में है। जिले में 147 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। नाम वापसी के बाद अब जिले में जिला परिषद के लिए 22, पंचायत समिति के लिए 39, प्रधान के लिए 80 और उप प्रधान पद के लिए 76 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। सोलन जिले की काहला और भोजपुर पंचायत भी निर्विरोध चुनी गई है। काहला पंचायत में प्रधान राजेश ठाकुर सहित उप प्रधान और सभी वार्ड सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। वह शिमला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त और सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भी शीघ्र निपटान किया जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी देनदारियों का निपटारा जल्द करने और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी दिन छुट्टी मिलेगी जब उनकी पंचायत और संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ये अवकाश मान्य होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसके खिलाफ एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहाँ पंचायत स्तर पर भी चिट्टा के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
5: प्रदेश में चिट्टा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शंस, डिमांड रिडक्शंस तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं में पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिट्टे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक 123 कर्मचारी इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें से 31 को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
5: जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे। पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 है, जेएसबी आईपीएच के 9 है, जो यहां आर्मी और नेवी में काम करते रहेंगे उनके 8 है, एचआरटीसी के 8 है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 है। टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है।
0: चंबा जिले के भटियात उपमंडल के तुनुहट्टी लाहड़ू मार्ग पर ककीरा के पास एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक थे, जबकि चालक मंडी जिले का निवासी था। ये पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे और मनाली से डलहौजी जा रहे थे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का अहम मुकाबला खेला जाएगा। पंजाब किंग्स की टीम को 10 और 14 मई को धर्मशाला में अपने दोनों ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पंजाब किंग्स की टीम को ये मैच जीतना जरूरी है। पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार 4 लाख पेंशनरों के पेंशन व भत्ते जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को लीव इन कैशमेंट, ग्रेच्युटी व अन्य भत्ते नहीं दिए गए हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में वित्तीय प्रबंधन चरमरा गया है और महंगाई भत्ते की 15% किस्तें लंबित पड़ी हैं।
6: 16 से लेके 2021 तक लोग सेवानिवृत्त हुए, उनकी आज दिन तक लीव इन कैशमेंट, उनकी ग्रेच्युटी, उनके जो ड्यूज थे सरकार ने नहीं दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकार पैसे के फजूल खर्ची कर रही है, ये सारे का सारा पैसा प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों का है। इस सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन वो इस तरह से चरमरा गया है कि इस सरकार को यही समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या और क्या नहीं करें। एचआरटीसी के पूर्व कर्मचारी हमारे साथ बैठे, अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। आज कितनी तारीख हो गई आप?
0: नगर निगम शिमला में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सहब सोसाइटी से जुड़े ये कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सहब सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा पिछले लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की जनता से हर वर्ष 10% बढ़ोतरी के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के वेतन में नियमों के अनुसार वृद्धि नहीं की जा रही है।
7: एजीएम में जो हमारा 10% वार्षिक बढ़ोतरी होती थी वो इन्होंने जो है इस बार बिल्कुल खत्म की। हालांकि जो है एजीएम में ये मुद्दा ही नहीं था, फिर भी इन्होंने जो अपने आप हमारा 10% खत्म किया, क्योंकि इन्होंने जो आज जनता के ऊपर जो है 10% वृद्धि लागू कर दी है। अगर आपने जनता से लेने हैं तो हमें भी जो है 10% वृद्धि चाहिए। पहली बात यह है कि हमारा जो लेबर कोर्ट में जो है 3 सालों से जो है अभी केस चला हुआ है, कमिश्नर साहब एक बार भी जो 3 सालों में जो हमारे से बातचीत करने नहीं आए हैं।
0: इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

0: सुन रहे थे साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन आकाशवाणी
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले चित्र भारती, रात 10 बजे से 11 बजे तक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
2: स्पॉटलाइट।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आपटे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
0: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
2: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया, साथिया।
0: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहार।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगागारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कहीं।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
2: बेचारे, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

0: 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,
1: तुम

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म एबीसीडी 2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरा आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं। और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा। इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: दिवसीय कार्यक्रम में
1: प्रसिद्ध
0: हम आपको सुनवाएंगे
1: पंडित संगमेश्वर गुरु के सुपुत्र है। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of music, we bring you a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. Pandit Kaivalya Kumar Gurav is a renowned musician and disciple of Pandit Sangameshwar Gurav. He started his musical journey at the age of 15 with Marathi Natya Sangeet. After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honoured with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Jadesh Hogar और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
2: इन टुनाइट्स प्रोग्राम He is accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hogar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. Pandit Kaivalya Kumar Gurav begins his vocal recital with Rag Durga, Rupak Tal, Rasa Kanhare, Drut Ek Tal, Lagi Lagana Tore Piyase, Drut Teen Tal, Chatura Sugara.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
3: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashwani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब इस सभा के कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। अपनी अगली सभा में सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए शुभ रात्रि। जय हिंद।